0: Hello, I'm Kim Cartwright. Labor officials are digging into discussions on foreign affairs issues at the final day of the party's national conference. Here's Federal Politics editor Michael Packey.
1: Labor's national conference is entering its third and final day, and while the policy debate has so far been fairly subdued, that's expected to change this morning. Some members are pushing the party to abandon the AUKUS defence pact and downgrade our relationship with the US. The foreign affairs debate will also focus on Israel, with a group of Labor supporters demanding the party take a stronger stance against the state, condemning its actions in Gaza and going as far as removing Australian embassy staff from Tel Aviv. Labor officials are trying to avoid a major fight on the conference floor and reach a compromise on these issues. Michael Packey, Adelaide.
0: Dairy farmers are calling for supermarkets to separate dairy foods from overseas into different labelled cabinets in a move aimed at supporting local farmers. The system works well in European supermarkets. The call comes as Lactalis prepares to shut its Longwarri factory in Victoria's Gippsland next year. Victorian Nationals leader Danny O'Brien says shoppers need to know where their food is coming from.
2: We need strong country of origin labelling, and we've mostly got that, but it could always be looked at to strengthen, because I think Australians do want to support Australian produce. It's a real concern to me that some of this economic rationalism over the years has impacted on industries like the dairy industry and impacted on our regional communities like Longwarri.
0: Strike force detectives have charged a registered nurse employed by the Northern Sydney Local Health District over an alleged data breach. The 59-year-old man is accused of accessing personal medical records from New South Wales Health without authorisation. Electronic devices allegedly containing patient details have been seized from a home at French's Forest. A police officer is recovering in hospital after being shot while responding to a domestic violence call on Queensland's Fraser Coast. A 45-year-old man allegedly opened fire when police arrived on scene last night, striking an officer in the leg. Specialist police later searched the property and found the gunman deceased. The Ethical Standards Command is investigating. The Cook Labor government in Western Australia has mounted a legal bid to stop an inmate who has transitioned to female while incarcerated in a men's prison from transferring to a women's jail. The West Australian State Administrative Tribunal recently ruled in favour of the inmate's move. However, a Supreme Court judge granted a stay on the decision. It means the woman will remain behind bars in a male prison until the matter is resolved. Lawyer Tom Percy telling Nine News it's unclear which way the decision will go.
3: This is a very difficult case. It's unlike any I've ever encountered before. This is one of those problems that creeps up on us from time to time, to which there's no ready answer. And I think that there will need to be a lot of soul searching about what's the best way to proceed.
0: The Invasive Species Council says the finish line to eradicate feral cats on Kangaroo Island off the South Australian coast is in sight, following a funding injection of $2.7 million from the federal government. This is Air News. Australia has nabbed three gold medals in the pool overnight at the Glasgow Commonwealth Games. Lani Pallister won the 400-metre freestyle final, while Jenna Jones claimed top spot in the 100 metres. Jenna Forrester took home gold in the 200-metre backstroke after nabbing bronze in the 400-metre freestyle less than an hour earlier. Forrester won the swim in a tight contest, as heard on Channel 7.
4: Shanahan, Fredericks, Forrester, who will it be? Forrester might get there. Jenna Forrester, what a night she's had. Jenna Forrester takes gold.
0: Hannah Fredericks, who led at halfway, claimed the bronze. Glasgow-born Katie Shanahan picking up the silver at Tollcross, the pool in which she learned to swim. In AFL, Geelong has triumphed over Melbourne 18-9-117 to 14-13-97, the result keeping the Cats' top six hopes alive. Geelong's Shannon Neal telling Fox Footy it took a while to crack the opposition.
5: We don't look at the stats too much, but we knew they were unbeaten on the G, and obviously Kingy having some experience with us, we sort of knew that he'd be thinking the way that we play. So, they've sort of got a lot of run in their team, so we'll try to mitigate that. We got on top of them, which is great.
0: The Storm's finals hopes are on life support after going down to the Souths 28-26 in front of 10,000 fans. 11 tries were scored, but Campbell Graham's second in the dying stages, the match winner. Earlier, the Roosters beat the Knights 23-22 in Newcastle. Australian Independent Radio News.
6: Alive 90.5.
7: Namaste aur aapka swagat hai India Connect mein mere Veena Sashikumar ke saath. Aur I hope aaj ka jo सनी दिन चल रहा है आप एंजॉय कर रहे हैं या अगर आप गाड़ी में से सुन रहे हैं तो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आज मैं बात कर रही हूँ, मैंने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया, जैसे पिछली बार मैंने एक इंडिया से एक कलाकार को इनवाइट किया था, आज मैं बात कर रही हूँ स्नेहा जी से जो एक लोकल कल्चरल एम्बेसडर हैं. तो पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको स्नेहा जी के बारे में और मैंने क्यों इनको चुना. मैं पिछले थोड़े दिनों से इनके साथ बातचीत कर रही हूँ ऑनलाइन, ये मुझे एक ग्रुप व्हाट्सएप के ग्रुप की कम्युनिटी ग्रुप की तरफ से इनसे परिचय हुआ. और स्नेहा पटेल एक पैशनेट एडवोकेट हैं जो इंडियन संस्कृति भाषा और कम्युनिटी को सपोर्ट करती हैं ऑस्ट्रेलिया में. ये एक कुशल मंच संचालिका हैं, मतलब एमसी हैं, जो बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स में प्रोग्राम्स को चलाती हैं. इनके हाथ में होता है कि कौन अगला आके बात करेगा स्टेज में, है ना. और इसी के साथ ये गरबा वर्कशॉप्स, मल्टीकल्चरल प्रोग्राम्स, कम्युनिटी इवेंट्स में इनका काफ़ी दान है, योगदान है इस एरिया में. और प्रोफेशनली एक मॉर्गेज लेंडर हैं, फिनेंस मैनेजर हैं जो फिनेंस लिटरेसी के वर्कशॉप्स करती हैं होम बायर्स के लिए. और इन्होंने एक वॉलेंट्री संस्कृत टीचर भी हैं, जैसे मैंने कहा था भाषा को प्रमोट करती हैं यंगस्टर्स के लिए, आजकल के यंगस्टर्स बच्चों के लिए भाषा और जो इंडियन भाषा है इनको जानना मुझे लगता है काफ़ी ज़रूरी भी है. तो इसके बारे में बात करती हैं. और स्नेहा अपनी डाइवर्स टैलेंट्स और डेडिकेशन के साथ इंडियन ट्रेडिशंस को सेलिब्रेट करते हुए कम्युनिटी को एम्पावर करना चाहती हैं. इनका ये मिशन है कि ये हमारे कल्चर हेरिटेज को सपोर्ट करें, इसी के साथ ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटी को भी सपोर्ट करें क्योंकि ये इनकी कर्म भूमि है. सो थैंक यू स्नेहा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे.
8: थैंक यू सो मच वीणा जी फॉर हैविंग मी ऑन योर रेडियो शो टुडे. मैं हृदय के अंतःकरण से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे उस काबिल समझा कि मैं अपनी जर्नी आपके लिसनर्स के साथ शेयर कर सकूँ. सो इट्स ट्रूली एन ऑनर टू बी हियर एंड शेयर माई जर्नी विथ योर लिसनर्स.
7: मेरे को लगता है मेरे लिसनर्स को भी पता चल जाएगा क्यों मैंने चुना और होपफुली आपको मैं अपनी तरफ से दिखा सकूं कि आप क्या क्या कर रही हैं कम्युनिटी में और इसका क्या असर हो रहा है. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. लेकिन हम और बातचीत करेंगे, पहले थोड़े आपने गाने भी चुन के दिए हैं मेरे लिए. तो हम गाने भी सुनेंगे बीच बीच में और हम आपसे और बातचीत करेंगे.
8: जी ज़रूर.
9: Your local radio station, Alive 90.5, keeping you up to date with local issues and events in the hills, Parramatta and Cumberland areas.
7: टीकाकरण खसरे, काली खांसी आदि गंभीर बीमारियों से बच्चों की रक्षा करता है. अपने डॉक्टर से बात करके ये सुनिश्चित करें कि क्या आपके बच्चों को समय अनुसार सभी टीके लग गए हैं. ये एक हेल्थ NSW का मैसेज है.

0: नमस्ते और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं बातचीत कर रही हूँ आज स्नेहा पटेल जी के साथ जो यहाँ मेरे साथ हैं स्टूडियो में। तो स्नेहा जी, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने बहुत लोगों को कल्चरल डांस ड्रामा ये सब प्रमोट करते हुए सुना है, ठीक है, तो आपका ये लैंग्वेज प्रमोशन, कल्चर तो आप प्रमोट करते ही हैं बट संस्कृत और बाकी के लैंग्वेजेस जो इंडियन लैंग्वेजेस आप प्रमोट करती हैं, इसका सफ़र कैसे शुरू हुआ? पहले ये बताइए आपका ऑस्ट्रेलिया आना कैसे हुआ?
1: वीणा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में आए हुए तकरीबन 18 साल हो गए। तो जब मैं आई उसके पहले मैं इंडिया में भी ये सारी चीज़ें करती थी।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं आई वॉज़ वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ डांस और म्यूज़िक, तो मेरे घर में एक ये परंपरा है जो कि आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस ऑनर ऑफ हैविंग द हेरिटेज पास्ड ऑन फ्रॉम माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड माय पेरेंट्स। तो मेरे दोनों दादाजी जो है दे हैव बीन इन एकेडमिक्स एज वेल, दे हैव बीन professors and lovers of Sanskrit literature and language, English और maths और science के teacher और professor होते हुए भी वो bunk करके अपने ज़माने में संस्कृत के class अटेंड करने जाते थे कॉलेज में।
0: wow.
1: तो शायद बचपन से ही ऐसा एक माहौल घर में था कि भाषाओं के लिए संस्कृति के लिए एक अलग प्यार था। और डांस के लिए भी जो प्यार था, एज अ फोक डांसर मेरे काफ़ी शोज़ होते थे, स्टेज परफॉर्मेंसेस होते थे दूरदर्शन पे। आई एम टॉकिंग अबाउट अ टाइम व्हेन देयर वाज नो इंस्टाग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा, एंड वी यूज्ड टू हैव ऑल दिस रिकॉर्डिंग्स इन द दूरदर्शन स्टूडियो, राइट?
0: तो ये जब मैंने देखा हुआ है हम लोग वेट करते थे ना कि हमारे हम भी मैं जब छोटी थी कहते थे कि यार तुम करोगी तो फिर तुमको भी हम लोग दूरदर्शन भेजेंगे।
1: और ये जो लाइव होता था कि मैं इस जगह पे पहुंच चुकी हूँ और मैं ये करने वाली हूँ, ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं। तो वी यूज टू वेट फॉर अवर रिकॉर्डेड शोज टू बी ब्रॉडकास्टेड, एंड वो एक अलग ही उसका मज़ा था। तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो सबसे पहले तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगा कि ये चीज़ मैं कंटिन्यू कैसे करूं, क्योंकि मैंने बहुत शिद्दत से 7 साल तक संस्कृत पढ़ा है। और वो पढ़ने के बाद पीएचडी कंटिन्यू करने या परस्यू करने के लिए मुझे यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली। तो मैं बैंकिंग में लग गई और वेरी फॉर्चुनेट एक्चुअली कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं भी अपनी कम्युनिटी को कुछ मीनिंगफुल वापस दे सकूं। तो थोड़े तो साल लग गए, एंड द रीज़न व्हाई आई एम सेइंग ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट एंड ब्लेस्ड कंट्री टू लिव इन, क्योंकि रिगार्डलेस ऑफ माई एकेडमिक बैकग्राउंड एंड माई डिग्री आई स्टिल गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट माई बैंकिंग करियर विथ वन ऑफ द टॉप 4 कंपनीज हियर, एंड देन इवेंचुअली आई कार्ड माई नीश एंड माई वे एज अ मॉर्गेज लाइक अ लैंडिंग मैनेजर, एंड देन वेरियस हैड्स वेरियस रोल्स डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो वो करती रही। एज अ फाइनेंशियल लिटरेसी की बात हम करें तो कंपैरेटिवली ऑस्ट्रेलिया में देर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप एज वेल। सो एज अ फर्स्ट होम कोच आई हैड द प्रिविलेज टू रन दिस वर्कशॉप्स एंड हैव द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स फॉर द बायर्स, फर्स्ट होम बायर्स हु वॉन्ट टू गो इन टू द मार्केट, फॉर इन्वेस्टर्स टू अंडरस्टैंड हाउ इक्विटी वर्क्स एंड दैट स्टफ। बट वो हम थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएंगे अपने कन्वर्सेशन से। तो coming back to what I was talking about, ki my contribution has always been centered around promoting Indian languages, literature and culture while creating opportunities for people of all ages to stay connected with their roots. To is koshish mein mujhe sabse pehla breakthrough mila again through dance. I joined an institution and then little bit of anchoring

0: working and little bit of being associated with an organization jahan pe mujhe ek room mila jahan pe main bachcho ko padha sakun aur bado ko bhi sanskrit padha sakun to thoda mujhe confidence wapas aaya ki ha ye cheez yahan pe bhi possible hai. And then the journey started step by step, very little steps I would say, but kahin na kahin mujhe wo mauke milte gaye aur ek break aata hai kabhi na kabhi because of the kids and maternity and COVID.
1: Of course.
0: So step backs aate hai and you take a back seat sometimes for numerous reasons. Mm. But main aur bhi baatein karungi, bataungi ki mera journey kaisa tha. ये बहुत ही आनंद की बात है मेरे लिए कि मुझे भाषा प्रमोट करने के लिए एक ये जो प्यार है इंग्लिश तो है ही है बिकॉज इट्स अवर प्राइमरी लैंग्वेज इन दिस कंट्री. गुजराती क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है तो जननी और जन्मभूमि ये स्वर्गादपि गरीयसी ये तो आपको पता ही है कि अपनी भाषा मातृभाषा माता मातृभाषा मदरलैंड इसका प्यार तो होता ही है. और संस्कृत उसका मैंने आपको बता दिया.
1: हाँ बिल्कुल. नहीं संस्कृत मैंने बहुत कम लोगों से सुना है कि वो संस्कृत सिखाते हैं तो हम इसके बारे में और बात करेंगे. और मैं जानना चाहूँगी कि अभी भी आप करती हैं या आपका कोई प्लान है वापस लोगों को संस्कृत सिखाने का, तो फिर आप मेरा नाम भी लिख लें उसमें क्योंकि मैं ज़रूर सीखना चाहूँगी. क्योंकि जो श्लोक हम पढ़ते हैं वो सारे तो संस्कृत में होते हैं तो वो श्लोक का मतलब समझना भी मुझे कभी कभी अगर संस्कृत में समझाएं तो उसका उच्चारण भी अच्छा आता है. अगर आप संस्कृत सीख रहे हो तो उसका उच्चारण भी अच्छा आता है. तो हम और इसके बारे में बात करेंगे लेकिन अगला गाना आपका आपका पसंदीदा केके का यारों सुन लें फिर उसके बाद वापस आके हम बात करेंगे इसके बारे में.
0: थैंक यू.
2: अलाइव 90.5.
1: क्या आपकी आयु 65 साल या इससे अधिक है? इस बार सर्दियों में गंभीर रोगों से अपनी और दूसरों की रक्षा करने के लिए टीकाकरण करवाएं. आपके लिए कौन सा टीका सही है इसके बारे में अपने जीपी या फार्मासिस्ट से बात करें.

0: Wexpo runs Western Sydney premium events and expos that bring together business leaders, community organisations and innovators to connect, learn and grow. Held at venues across the region, iEvents include exhibitor opportunities, expert panels, workshops and networking opportunities designed to spark ideas and build success. For all upcoming Wexpo events, visit wexpo.com.au. Wexpo is backed by the region's leading media organisation Community Broadcast Network with 5 newspapers published across Western Sydney. Station sponsor.
1: Adriano Coluccio Funeral Services is an Australian-owned and operated funeral home providing dedicated, dignified, versatile and professional funeral services, assisting community members in their time of grief and loss, regardless of ethnicity and religion. Our commitment and compassion is dedicated to setting the highest standard in funeral professionalism and supporting families through what is the most difficult time of their lives. Located in Smithfield and Miranda, servicing all Sydney areas, Adriano Coluccio Funeral Services, always with you. 9604 9604. Station sponsor.
2: गुड आफ्टरनून और आपका स्वागत है इंडिया कनेक्ट में मेरे वीना शशि कुमार के साथ और मैं आज बात कर रही हूँ स्नेहा जी के साथ जो हमें अभी बता रही थी उनके लैंग्वेज लव फॉर लैंग्वेज के बारे में भाषा के बारे में बता रही थी और तो मैंने उनको लास्ट पूछा पिछला जब ख़त्म होने से पहले मैंने उनको पूछा कि आपका नेक्स्ट लैंग्वेज प्रोजेक्ट क्या है आप क्या इस एरिया में आप क्या कर रही हैं
3: तो वीना जी एज अ वॉलंटियर you know I would call myself an ambassador for our culture and language kyunki each one of us in our own unique ways carry that cultural pride to hum sabhi ek tarah se ambassadors hai in this beautiful country that we call home तो मुझे बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे और युवा हमारी भाषा और परंपरा से जुड़ते हैं थ्रू कल्चरल प्रोग्राम्स गरबा वर्कशॉप्स स्टेज होस्टिंग परफॉर्मेंसेस एंड कम्युनिटी इवेंट्स आई हैव ट्राइड टू बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन जनरेशंस एंड सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ इंडियाज़ रिच हेरिटेज इन ऑस्ट्रेलियाज़ मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड वेरी ग्रेटफुल टू दिस कंट्री फॉर बींग सो एक्सेप्ट showing that resilience and acceptance of different cultures and celebrating diversity across the world. तो जो languages की बात मैं कर रही हूँ उसमें संस्कृत अभी मैं पढ़ा तो नहीं रही हूँ there are a lot of things that I have done which currently I must say I'm not necessarily doing all of them but मेरा प्रयत्न हमेशा से यही है कि मैं कुछ कर पाऊँ तो जैसे कि मैंने बताया कि professionally as a mortgage lender and finance manager I also used to conduct financial literacy sessions to help families make informed decisions about home ownership और मेरे लिए community service सिर्फ cultural activities तक सीमित नहीं है it's also about empowering people with knowledge and confidence. So in a way, if we keep doing those things, then there's very little time left for promoting the language and, you know, following your passion. So of course, uska maine ek thoda backseat leke from my professional world, I have started promoting the language more by associating myself with an organization jo ki Gujarati language aur literature par focus karta hai saal mein kafi bar at every regular interval of a few months ek event organize karta hai jisme मातृभाषा महोत्सव या वर्ल्ड लिटरेसी डे गुजराती लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रमोट करने जैसी काफ़ी सारी चीज़ें हम करते हैं और उसमें बच्चे बड़े सब एक एक एक साथ उत्साह के साथ जुड़ते हैं उसमें ड्रामा स्किट परफॉर्मेंसेस वक्तृत्व और काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर भी करते हैं तो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से मेरा ये एक बहुत ही छोटा सा प्रयत्न है कि मैं अपनी कम्युनिटी को कुछ वापस दे सकूं वाइल्स्ट लिविंग माय ओन पैशन एंड यू नो फॉलोइंग द थिंग्स दैट आई ऑलवेज wanted to do and at the same time it's giving something back to the community hum apni aane wali peedhi mein bhi ye dekh sake ki unka bhasha ke sath judna ek directly related to sanskriti ke sath judna culture ke sath judna apni paramparao ke sath judna to ye mere liye bahut hi mahatv ki baat hai
2: na ye aapne bahut sahi kaha hai kyunki जब हमारे बच्चे हमारी भाषा, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है कि अगर दो तीन भाषा अगर हम जानते हैं तो ये एक्चुअली एक स्ट्रेंथ है. पहले बीच में क्या हो गया था, जैसे इंडिया में, इंडिया की भी बात कर रही हूँ, इंडिया में जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स आने लगे तो हमारे बहुत सब लोगों का फोकस होने लगा, सब लोग अंग्रेजी में बात करो, तो वो जो मातृभाषा में बात करना या फिर उसको जानना एक थोड़ा सा एक क्या कहते हैं, थोड़ा एक रेजिस्टेंस आने लगा युवा पीढ़ी में.
3: जी,
2: हमारे लिए तो ये होता था कि हमारे दादा नानी होते थे जिनके जिनको मिलने जाना तो जरूरी था हमारे लिए, है ना. हर समर में तो हम जाते ही जाते थे, दो महीने की छुट्टी एक नानी के यहाँ पे होता था, एक दादी के यहाँ पे होता था.
3: जी,
2: और वहां अगर हमने अपनी मातृभाषा में बात नहीं की तो पढ़ती थी दो कि ये कौन सी भाषा में बात कर रही है. तो
3: और आजकल हम एक यूनिक पैटर्न देख रहे हैं कि हम अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात कर रहे हैं और हमें रिप्लाई मिल रहा है इंग्लिश में, और दैट इज न्यू नॉर्म दैट वी हैव एक्सेप्टेड कि ये तो बिल्कुल नॉर्मल ही है कि हम दो भाषाओं का साइमल्टेनियस यूज करते हैं. जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ आपसे हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल हिंदी में बिल्कुल गुजराती या शुद्ध हिंदी शुद्ध गुजराती में बात करने लगूं तो शायद हमारे नेटिव स्पीकर्स ही होंगे जो बोलेंगे कि भाई ये कौन से
2: थोड़ा भारी हो गया.
3: हाँ, ये थोड़ा बहुत भारी हो गया, ये रामायण या महाभारत देख रहे हो ऐसा लग रहा है. इसलिए कोशिश यही रहती है कि थोड़ा ईजी फ्लो में बात करें तो ऑडियंस कनेक्ट हो पाए.
2: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, आप ये बात तो आपने सही कहा है, लेकिन ये जो भाषा के बारे में, क्योंकि मैं अपनी बेटी को भी मैं देखती हूँ कि हम घर में तमिल में बात करते हैं, मेरी सास को तमिल ही समझ में आता है, तो हमने मेक श्योर किया कि भाई उसको तमिल आए. लेकिन अभी उसको ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड जब उसको कुछ जानना नहीं होता ना तब हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि उसको हिंदी समझ में नहीं आती गानों के अलावा तो लेकिन ये एक ट्रेंड हो रहा है, जो चेंज हो रहा है. तो आई थिंक अभी हम जैसे लोग अगर प्रमोट करेंगे और ज़्यादा बात करेंगे इसके बारे में तो इसका असर भी हमारे युवा पीढ़ी पर ज़्यादा पड़ेगा और वो चाहेंगे कि वो हमारी मातृभाषा में भी बात करें, उनकी मातृभाषा में भी बात करें.
3: तो हम संस्कृत क्योंकि बहुत ही एक साइंटिफिक लैंग्वेज भी है, तो मैं इसके बारे में आपसे थोड़ी ज्यादा बात

0: Hello, good afternoon and welcome back to the Indian Connect. And मैं वीना शशि कुमार, मैं आज बात कर रही हूँ स्नेहा पटेल जी के साथ और हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस के बारे में, संस्कृति के बारे में और ये कैसे प्रमोट करती हैं उसको. एंड तो स्नेहा जी बताइए, इन टर्म्स ऑफ योर, अभी तो सीजन, हमारा फेस्टिवल सीजन शुरू हुआ है इंडिया का
1: जी,
0: है ना, तो आपका लाइफ तो काफी बिजी हो गया होगा.
1: लाइफ तो काफी बिजी हो ही जाता है और वीकेंड या वीकडे में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता, इतना ज्यादा बिजी हो जाता है. सो मैं तो यही कहूंगी कि जब हम ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में आ चुके हैं, आ गए हैं, इसको अपना घर बना लिया है और यही है कि ऑब्वियसली बिकमिंग एन ऑस्ट्रेलियन सिटीजन डज नॉट मीन you do not carry forward your culture, right?
0: So
1: along with continuing to be a very proud Australian citizen, we are also deeply associated with our country of birth as well. So ye sare jo functions hote hai, events hote hai, it's like, you know, embracing and integrating into the Australian society and its values, along with being our cultural ambassador of our cultural heritage and identifying with our country of birth. मैं आज एक एक्सपो हो रहा है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगी, रोजिल में भारत हेरिटेज एक्सपो.
0: हाँ, मैंने सुना तो था, फेसबुक में देखा था इसके बारे में. हाँ,
1: ये हो रहा है रोजिल रेसकोर्स में, एक्चुअली 12 बजे से शुरू हो गया है. तो इफ़ योर लिसनर्स वॉन्ट टू ज्वाइन, इट इज़ हैपनिंग एट रोजिल रेसकोर्स एंड इट्स द बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल. तो फेस्टिवल की तैयारियाँ शुरू हो गई है ऑलरेडी. नवरात्रि, दिवाली, नवरात्रि तो गुजराती लिसनर्स को भी शायद पता ही होगा कि काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ये बार डिसाइड किया कि मैं एक गरबा इवेंट जाऊंगी तो मैं आपको कांटेक्ट करूंगी कि अगर आपको कोई अच्छा वाला गरबा इवेंट पता हो तो मुझे ज़रूर बताएं, तो हम जाएं. मतलब मैंने एक क्या कहते हैं घाघरा चोली खरीद के रखा हुआ है, वो पहनना तो ज़रूरी है.
1: सी आर्टिस्ट तो बहुत होते हैं और बहुत से आर्टिस्ट बहुत अच्छे भी होते हैं. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गो देयर एज अ ग्रुप एंड एंजॉय, क्योंकि आपकी कंपनी, इट मैटर्स अ लॉट. तो हम एक अच्छे से गरबा इवेंट में साथ में जाएंगे जहां हम मन भर के बस गरबा.
0: हाँ, आप मुझे सिखा देना. हाँ, मैं सिर्फ, मेरे को गरबा करना आता तो नहीं, आप सिखा देना क्योंकि आप वर्कशॉप करती है तो फिर मैं आपके साथ सेफ हूँ.
1: पक्का पक्का, दैट इज़ फॉर श्योर. आप और कुछ बताना चाहेंगी कि इंडिया के बारे में?
0: नहीं, मैं एक्चुअली आपका, आप जो ये काम कर रही हैं इसको काफ़ी सराहती हूँ, क्योंकि ये एक जो यहाँ आके, देखिए फुल डिस्क्लोजर, जो जब यहाँ आके जब हिंदी में बात करना पड़ता है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम बात नहीं करते, जैसे आप कहती हैं ना, रोज़ रोज़ हमारा बात हिंदी में नहीं होता है, क्योंकि ऑफिस में तो इंग्लिश में ही चलता है, घर में भी हमारे बच्चे सिर्फ इंग्लिश में जवाब देते हैं, तो फिर इनवेरिएबली उनके साथ इंग्लिश में ही बात हो जाती है
1: जी.
0: क्योंकि वो जवाब इंग्लिश में देते हैं, फिर हमारा वापस सवाल, नेक्स्ट सवाल तो हमारा इंग्लिश में ही आता है ना, अपनी लैंग्वेज में तो आता नहीं है.
1: और यही मेरा एक मोटिवेशन है कि साइंटिफिकली इट्स बिन प्रूवन कि बीइंग मल्टीकल्चरल, मल्टीलिंग्विस्टिक, मल्टीलिंगुअल has a different bifurcation of your nervous system in your brain, right? हाँ,
0: हाँ.
1: तो आपकी सोच, आपके विचार, आप उसको कैसे प्रकट करते हो compared to a person who is monolingual, वो different होता है.
0: हाँ.
1: And academically also it can be more, it can prove to be more successful.
0: हाँ.
1: तो मैं यही कहूँगी कि जो ये scientifically proven language है संस्कृत, computers के लिए सबसे best है, उसकी वजह से आपके उच्चारण भी उतने शुद्ध होते हैं कि आप और लैंग्वेजेस भी इजीली सीख सकते हो. वर्ल्ड की 25% वोकेबुलरी उस भाषा से आई है. तो और भी भाषाएं सीखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप स्पेनिश, चाइनीज़, मैंड्रिन और भी सारी भाषाएं सीख सकते हो, लेकिन हमारी हिंदुस्तानी भाषाएं, तमिल है, मराठी है, काफ़ी सारी भाषाएं सीख सकते हो, है ना. तो कोशिश तो यही है कि बच्चे जितना हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें सीख सके, अपने रूट से कनेक्टेड रह सके, और ऐसी कोई भाषा जिसमें सिर्फ ना उसको मृत प्राय बोले ये भाषा, बट आगे जाके जो बोलते हैं उसका अर्थ भी समझे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम इसके बारे में और थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा हमेशा एक ये रहता है कि हम हमारे भाषा के बारे में ज़्यादा बात करें, ज़्यादा जानें और इसके बारे में ज़्यादा समझे भी, क्योंकि हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब जो हम बात कर रहे हैं हमेशा हमारे दिमाग में घुस रहा है है ना. कुछ लोग मैंने देखा है कि जो भाषा पढ़ते हैं लेकिन उनको उसका कोई मतलब पता नहीं होता.
1: Exactly.
0: है ना. तो ज़रूर, बट थैंक यू सो मच आपका जो ये इनिशिएटिव्स है इसके बारे में बात करने के लिए, इधर आके अलाइव में आके मेरे साथ आमने सामने बैठ के बात करने के लिए. आपको टाइम तो लगा होगा, सैटरडे का ट्रैफिक अब हम जानते हैं. तो आपका तहे दिल से शुक्रिया यहाँ आके बात करने के लिए मेरे साथ.
1: नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मुझे बुलाने के लिए. मैं दिल से आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी कहानी और अपना सफ़र आपके श्रोताओं के साथ बांटने का मौका दिया और मुझे उस लायक समझा. सो थैंक यू वंस अगेन. आई एम ट्रूली अप्रिशिएटिव एंड ग्रेटफुल फॉर दी अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई जर्नी विथ योर लिसनर्स.
0: थैंक यू सो मच एंड होपफुली वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर एट सम अदर पॉइंट इन द फ्यूचर, क्योंकि आई कैन सी दैट यू आर वर्किंग टू अ लॉट इन द स्पेस एंड मैं को और जानना चाहती हूँ कि आप क्या कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में. लेकिन उसके बारे में हम एक और दिन निकालते हैं, एक घंटा कम में
1: two,
0: और हम बात करना शुरू करें तो करते ही रहेंगे.
1: यस, थैंक यू सो मच.
0: सो दैट वाज स्नेहा जी और उन्होंने अपने अपना जो इनिशिएटिव्स है सिडनी में इसके बारे में बात कर रही थी. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू हर. अगर आपका कोई सवाल हो इनके लिए तो मुझे ज़रूर भेजें और अलाइव को भेजें, या फिर आप किसी को जानते हैं जो आके हमारे शो में हमारे साथ उनकी जर्नी शेयर करना चाहता है तो मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें. आप अलाइव के वेबसाइट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकती हैं या फिर हमें टेक्स्ट कर सकती हैं. नंबर है 0405-905-905 या फिर आप ईमेल कर सकती हैं अलाइव को उनके वेबसाइट में जाके जो है alive905.com.au. और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अच्छा अगर आप स्नेहा जी से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उनके इंस्टाग्राम स्नेहा लाइव
1: स्नेहा पटेल अंडरस्कोर ऑफिशियल अंडरस्कोर
0: है इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो आप उसमें से इनको कांटेक्ट कर सकती हैं. और जाने से पहले, ये सेक्शन ख़त्म होने से पहले, मैं एक और चीज़ हमारे जो फेसबुक ग्रुप्स में से, एक इंडियन फेसबुक ग्रुप में से मुझे पता चला कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी तो ऑस्ट्रेलिया में आया नहीं है या फिर इनकी सिर्फ शुरुआत हुई है, लेकिन गोपीनाथ मुत्तुकड जो एक मलयाली मैजिशियन है, इंडिया के मैजिशियन है, वेरी वेल नोन मैजिशियन जो ऑलमोस्ट 44 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं मैजिक, अभी उन्होंने एक आर्ट सेंटर खोला है. इट्स कॉल्ड डिफरेंट आर्ट सेंटर जो है त्रिवेंद्रम में, और वहाँ ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चों को मैजिक सिखाते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म सिखाते हैं ताकि वो परफॉर्म कर सकें. तो इसके बारे में मुझे लगा कि सबको बताना चाहिए. और इसके ये एक और फ्री है एंट्रेंस, इनका जो सेंटर है इन यहाँ एंटर करना फ्री है और आप वहाँ जाके उनको मिल सकते हैं, उनका शोज़ देख सकते हैं. तो ये बहुत ही उमदा काम कर रहे हैं इस एरिया में और उनको बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं. तो इसके अलावा एक चीज़, अभी अगस्त आ रहा है, पाँच छः दिन में अगस्त आ जाएगा और अगस्त में पहला सबसे बड़ा चीज़ जो होने वाला है वो हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है. 80 साल हो गए हैं इंडिपेंडेंस को. तो 16 अगस्त को इसका एक सेलिब्रेशन हो रहा है डार्लिंग हार्बर में, संडे है. आईसीसी डार्लिंग हार्बर थिएटर आईसीसी में हो रहा है. एंट्री फ्री है लेकिन रजिस्टर करना ज़रूरी है. तो कौंसलेट जनरल, इंडियन कौंसलेट जनरल के वेबसाइट में जाएं और रजिस्टर करें. इसके अलावा एक अलग अलग जगह पे इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, जो 15th अगस्त को एक ग्रेट इंडियन कार्निवल हो रहा है वेंटवर्क पार्क में, कलोनियल सेलिब्रेशंस हो रहे हैं डार्लिंगहर्स्ट में. तो आप जाके पता करें और फेसबुक में अगर आप एक मैसेज डालेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस डे इवेंट तो बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, तो ज़रूर जाके देखें इसके बारे में. और अगर आपको कुछ पता चले जो मैंने बताया नहीं है तो मुझे भी ज़रूर बताएं कि ताकि मैं बाकी लिसनर्स के साथ भी शेयर कर सकूँ इसको. तो अगला एक और मैसेज के बाद हम विदा लेंगे.
2: Alive 90.5.
0: आपकी वार्षिक फ्लू वैक्सीन आपको गंभीर रोगों से सुरक्षित रखता है. आज ही अपने जीपी या फार्मासिस्ट से इसके बारे में बात करें. healthdirect.gov.au/nsw-flu-vaccine पर जाएं.
3: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.hartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
5: Around the world.
2: Around the globe.
5: Streaming live 24/7.
2: Alive905.com.au.
6: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
0: हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडिया कनेक्ट मेरे वीना शशि कुमार के साथ. आज अभी तक मेरे साथ है मेरे स्टूडियो में स्नेहा पटेल जी और उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ ऑस्ट्रेलिया की जर्नी और अपना जो इंडिया की जर्नी और वो क्या करती हैं या इसके सब के बारे में हमारे साथ शेयर किया और होपफुली आप कनेक्ट करेंगे इनके साथ और इनसे और जानकारी लेंगे क्योंकि मैं इसके बाद इनके साथ और बातचीत करूँगी. बट तो थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ.
1: नहीं, थैंक्स फॉर हैविंग मी.
0: और मैंने पिछली बार भी ऐसे लोगों को इनवाइट किया था जो मैं जानना चाहती हूँ, जो इंडिया में या फिर यहाँ जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ. तो अगर आप किसी और को जानते हैं जो ये शो में आके हमारे साथ बात करते हैं, उनकी जर्नी शेयर कर सकें या फिर वो क्या कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए या फिर उनका कोई प्रोजेक्ट है जो वो कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं उसके बारे में आके बात कर सके, तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव बनेगा कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ आपके प्रोजेक्ट को प्रमोट करने के लिए या ये बताने के लिए कि हम कम्युनिटी के लिए क्या कर रहे हैं. क्योंकि मुझे लगता है एज़ जो हम कर्म भूमि में आते हैं हम इसको काफ़ी सीरियसली ले लेते हैं और हम ना सिर्फ अपना चीज़ ही नहीं कम्युनिटी के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते हैं. तो ये हम यहाँ कर भी पाते हैं यहाँ, जैसे इंडिया में करना क्योंकि शहर भी बड़ा है, जहाँ भी रहते हैं शहर बड़ा होता है, लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ करना और एग्जीक्यूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है मुझे कभी कभी क्योंकि मैंने वहाँ भी काम किया हुआ है. तो लेकिन यहाँ करना कभी कभी काफ़ी आसान होता है. तो आप अगर कोई कर रहा है तो उसके बारे में मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी और उसके बारे में सबको बताना चाहूँगी कि ये हो रहा है हमारे कम्यूनिटी में. जैसे सपर क्लब, बहुत लोगों ने अभी सपर क्लब शुरू किया है. पिछली बार मैंने इंस्टाग्राम में उनको फॉलो करना शुरू किया और इतने सारे सपर क्लब, अभी मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ जाएगा फेस्टिवल सीजन के पहले कि इतने सपर क्लब्स में अगर चली जाऊं तो. तो लेकिन ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग हम सब मिलके कुछ दूसरे लोगों से मिले, दूसरों की जैसे वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं, सबका डिफरेंट डिफरेंट जो क्विजींस है वो ट्राई करने को मिलता है. इसके अलावा मैं एक चीज जो बात करना चाहती हूँ कि और ये आई थिंक सारी महिलाओं के लिए काफ़ी फिट बैठता है, क्योंकि हम एज विमेन बहुत सारी हैट्स पहनते हैं और सब चीज़ में हमें अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन होती है कि एज विमेन वी हैव टू डू एवरीथिंग एंड वी हैव टू डू इट वेल. तो एक मेरे मैंने रिसेंटली सुना जो जिसमें कहा था कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, और मैंने सुना ये एक अधूरा सेइंग है, क्योंकि पहले मेरे को बुला जाता था कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये तो मतलब यार तुम सब चीज़ करती रहती हो, सब किसी में तुम आगे नहीं बढ़ रही हो. लेकिन जो पूरा सेइंग है वो ये है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन येट बेटर देन मास्टर ऑफ वन. तो ये एक्चुअली एक कॉमेडियन ने शेयर किया था, राहुल दुआ जी ने, और उन्होंने कहा था ये इंसल्ट ने ले लिया यू टर्न और ये बन गया एक कॉम्प्लीमेंट. तो एज विमेन ये जैक तो नहीं बोलूंगी मैं, क्वीन ऑफ ऑल बोलूंगी. तो क्वीन ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन चलेगा, बट वी आर बेटर देन मास्टर ऑफ वन. तो विद दैट थॉट आई वुड लाइक टू एंड टुडे सेशन एंड थैंक यू जिन्होंने भी ट्यून इन किया सुनने के लिए. और आप अगले हफ्ते मुझे ज्वाइन करें, क्योंकि अगले हफ्ते आ रही है कहानी नानी. तो हम अगले हफ्ते बात करेंगे.
7: डाइव इन टू द लेटेस्ट न्यूज विद ऑज अरब मीडिया. Your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
8: Something's changed with Mum lately. You're not sure what to do. She wants to stay home. She can, with the right support. We're a small, dedicated home care team. Nursing, personal care, overnight stays, post-hospital care. We can usually be there within the week. One call, no pressure. We'll work out her needs together. Call Santa Clara on 02-811-8121. That's 02-811-8121. Santa Clara Home Care, care that feels like family.
9: Station sponsor.
4: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.